एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ गुड

0: रमाइलो संसार नि म जखार नि म इमानदार नि म भन्न चाहिँ गर्न सक्छु तरवार नि म सेक्योर बॉडी ऑन द फ्लोर यो रातको जिम्मेवार
1: एक जमाना क्यासेट को एक जमाना सिडी।

नतोनियो पारा मेरा माछन जुस्तु तुले कोई सन हल्का ज्या लेडीज होस या जेंस होस

हारने गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे फिर भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं सबको बना रहा हूँ, मेरी थोड़ी बता रहा हूँ, मैं हिंदी खाने से मारा हूँ, दिल्ली में आया है तू, लंदन में रहती है, अब भी क्या अब भी